0: यो हाँ जी 1674।
1: आ जा प्यार की होड़ी ले।
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील करा से।

0: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
1: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।
2: Oh my God, this is original.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जब चाहे तो

का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर्स, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी ए एम।
1: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे अखियों से, हाय हाय।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1674।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: ससुर अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी। हाँ जी।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM

0: बोलना।
1: ओए पुले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हास्य मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते फसाते।
1: ओए बोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए बोले ओए टू। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
3: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮੇ ਫਲਾਈਟਸ ਪਕੜਨੀਆਂ ਤੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਛੋੜ ਕਰ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਨਸੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਯੇ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਾ ਨਾਮ ਔਰ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟਿਡ ਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ, ਯੇ ਆਜ ਸਮਝਤੇ ਹੈਂ, ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਤੇ ਹੈਂ ਭਾਈ, ਯੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
0: ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਅਗਰ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਰ ਆ ਪਾਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂ ਐਸ ਮੇਂ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਵੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਯੇ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਸੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ,
1: ਕਰੈਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਸ ਮੇਂ, ਜੁਲਾਈ ਔਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ
0: ਜੀ।
1: ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਟਿਕਟੇ ਹੈ 12,000 to 15,000 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੋਪ ਟੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ
0: ਜੀ।
1: ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ 2,000 to 2,500 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
0: ਕਾਫੀ
1: 8-10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਅਬ ਸਰ ਯੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 80,000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ
0: ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ 200-300 ਉਨ ਸਬਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜੀ,
1: ਕੌਂਟਸ, ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਓਕੇ,
1: ਕੌਂਟਸ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਕਾ ਵੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
0: ਵੈਲੋਸਿਟੀ
1: ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਹੱਥ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 70-80%, ਇਫ ਨੋਟ 90%, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ। ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਏਮੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੌਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਫਾਸਟ ਅਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਤੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ
0: ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼
1: ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮੱਚ, ਉਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੋ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ,
0: ਓਕੇ,
1: ਔਰ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50% ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 9,000 ਕੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਜਸਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਉਹ 9,000 ਕੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵੋ 4.5 ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਓਕੇ,
1: ਆਈ ਗੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, अपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक. अगर आपके ज़्यादा हो तो एग्जाम्पल दूँ.
0: जी जी.
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ पे ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था एंड आई यूज माई पॉइंट्स. और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड. और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ. देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट.
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फायदा है. ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट?
1: बहुत ज़्यादा कर रहे हैं.
0: पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़िया इदा फड़ लिया.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना. तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता
0: है. और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना. तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना. तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए. और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट? समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर ऑर्गेनिक है तो उस पर भी चल सकता है.
1: प्रीमियम इकोनॉमी तो और भी इजी है.
0: हाँ, तो आप इस पर पहले, हम पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए.
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट. 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं.
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी.
1: इज दैट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल.
1: सो पहला एग्जाम्पल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीज पे, वूलवर्थ्स पे
0: जी,
1: ठीक है. बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है.
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है.
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं यार $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं.
0: बिल्कुल.
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है.
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना.
0: अच्छा, तो
1: तो फ्री हो गया ना?
0: तो काफी
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लोग जाते हैं. और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल. तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ.
0: जी, जी.
1: ठीक है, तो दिस इज एट द बेसिक लेवल. तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वूलवर्थ्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, JB Hi-Fi से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स है, एप्पल मैक है. तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है 20 points per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स.
0: जी,
1: ठीक है, 20 points per dollar ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स. अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के हाथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो Uber Eats से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या Uber Ride लेते होंगे
0: जी. बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी.
1: ठीक है, अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप Uber में कन्वर्ट कर दो.
0: ओके,
1: 5% का काम है
0: जी.
1: आपको Uber वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो Uber के ऐप में. एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank visa or master या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे Uber से
1: जाओ, कार खरीदो, वुलीस तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 पॉइंट. अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है, खाने पीने पे, ऊबर से या ऊबर राइड्स पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है 5,000, व्हाट्स 5,000 बाय 20, 100,000,
0: अच्छा वाह,
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है पुलिस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: तो आपके व्यूज शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके कॉन्ट्रेस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीज इज कॉन्ट्रेस और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके कॉन्ट्रेस में आ जाएंगे, सिमिलरली कोल्स में गए फर्क इतना है, कॉन्ट्रेस आ जाएंगे उसी सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स, और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑजी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है, मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड्स हैं जो हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे,
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी,
1: यू कैन अर्न 10 points per dollar, नॉट 1 point per dollar, 10 points per dollar, और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली,
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं उनमें करते हुए,
1: उनमें अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है, अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है सर्विस है दैट इज गेयर्ड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट, अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं, 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने, 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास,
0: 3 lakh पॉइंट पे,
1: हाँ जी,
0: मतलब सिर्फ टैक्सेस पे 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने की,
1: एवरेज 70,000 की भी हो सकती है, 80,000 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो, अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं, अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी,
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न, तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया,
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है,
0: ओके जब आई गेट योर पॉइंट है ना, जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी है ना, ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना,
1: कॉल्स के निकलते हैं सिर्फ ऊबर के,
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वूलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे,
1: काफ़ी टाइम से 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वूलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी,
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट, कल किसने देखा, नो वन हैज़ अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं,
0: ओके,
1: रेगुलरली किसी का किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वूली जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज हैं या आप इंप्लॉयज को भूल जाओ, आप हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड दे, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो 3-4 जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है. अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCM है हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो.
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है. एवरी वीक इस साल, अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ 2 हफ्ते ऐसे आए हैं जहां पे 10% ऑफ था.
0: ओके.
1: उसके अलावा हर वीक 10 पॉइंट्स पर डॉलर ऑन गिफ्ट कार्ड्स.
0: Okay.
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूँ मैं अभी.
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं. हाँ. कि यार इतना इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा. मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू,
0: बुलाया आपको,
1: मैं थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम भी इंडियंस, हम बहुत, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स. सो इफ यू, जहां तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट. आजकल तो AI आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ChatGPT, क्लॉड, लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं. आप उतना मत करो, आप ChatGPT को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है. कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो. दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है, इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है. ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है. ये तो मैं आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. 50% तो ऐसे हो गया. बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला.
0: हाँ, तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती. जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए, कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई PR लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो. राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट. तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई? बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट, द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से इजी होगा. कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो.
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी.
1: राइट, आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग. तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में. उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडलर, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन इकॉनमी. बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी.
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर रिटर्न.
0: अच्छा वाह,
1: $3,600 AUD फॉर 2 adults एंड अ टॉडलर रिटर्न. आप बता दो कि इट इज अ गुड डील और नॉट?
0: इट इज अ गुड डील, काफी गुड डील वैसे तो.
1: हाँ, अब ये जो लेडी है ये थोड़ी सी एनालिटिकल है, तो इन्होंने स्प्रेडशीट बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में. 5 hours. ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ़ यू डिवाइड 15,000 बाई 5 hours कितना आता है?
0: 3,000।
1: हाँ अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी। इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी। इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ सिक्स है तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है
0: जी
1: बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं। बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे।
0: ओके
1: राइट, साफ सी बात है। तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि $1,200 में फैमिली ऑफ सिक्स इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक।
0: वाओ,
1: फैमिली ऑफ सिक्स, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता।
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल? प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना? राइट, कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए। देर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100, अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2,00,000 पॉइंट दे रहे हैं वो।
0: अच्छा,
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000। वैसे एक बिजनेस को $2,00,000 खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स। अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा, और अगर यही 600 दे के आपको 2,00,000 पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
0: ह्यूज डील।
1: इट्स ह्यूज, ह्यूज।
0: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
1: कर सकते हैं, बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए। क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं। राइट, बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
0: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा।
1: ये मेन है। बट ये मेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2,000 की आती है, 1,800 में नहीं हो सकता।
0: हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न।
1: हाँ, लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2,500 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े।
0: हाँ वो तो, हाँ मतलब everybody likes a good deal,
1: everybody would like to do it, right? Even without doing a survey, 90% of your clients, जो आपके listeners हैं, अगर वो ये बात सुने तो 90% would put their hand up and say, yeah, मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2,200 या 2,500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है, which means lounge 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है? लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। और एक और चीज है, जेट लैग। At least 5 families in the last 6 days have told me कि holiday से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, guess घर पे कौन बैठा है? Parents.
0: बिल्कुल सही।
1: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? Parents को।
0: बिल्कुल।
1: तो वो productivity कहाँ गई? Parents की productivity कम हो गई ना?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और जब वो business में जाते हैं तो कोई jet lag नहीं होता।
0: ये वेट का तो बहुत इश्यू रहता है,
1: ठीक है ना?
0: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर, तो आपकी बात तो सही है।
1: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो, प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4।
0: अगर मैं इसे, सॉरी आपको टोका, अगर मैं इसे डाइसेक्ट कर दूं
1: जी,
0: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
1: जी,
0: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को वन वे की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर अ,
1: आप 1,00,000 चलो मोटा मोटा,
0: चलो 1,00,000 पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे है ना, तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है?
1: So,
0: पर हेड
1: हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
0: जी,
1: ठीक है, आपको 1,00,000 में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1,00,000 क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
0: जी।
1: इकोनॉमी होगी आपकी, प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की,
0: ओके
1: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता,
0: बिजनेस का मुझे पता,
1: बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरी डे। प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70-80 के बीच में, 68 भी हो सकती है, अराउंड 70 लगा लेते हैं
0: जी।
1: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो,
0: ओके,
1: एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम,
0: ओके,
1: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
0: अच्छा,
1: उससे सस्ते में, उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट्स यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो,
0: ओके। अब इसमें एक और आ जाता है सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे करने पे, तो ये कंपनीज, क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 इयर्स है ना, तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही है पहले से कि कम कर रही है?
1: 100% ज्यादा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेस्ट 2,00,000 पॉइंट दे रही है,
0: तो बढ़ रहा है, मतलब
1: बढ़ रहा है। अभी AMP बैंक है, एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट, 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
0: जी,
1: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
0: जी।
1: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट। बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10-50-1,00,000 बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10-50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं, मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। आप एक बार सोच कर देखो, व्हाई विल अ बैंक डू दैट? ठीक है,
0: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया, थैंक यू वेरी मच, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
1: जी,
0: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
1: जी?
0: बिकॉज हैविंग सेड दैट, ये मैं आपने क्या बताना है मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया, या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, किसी बैंक कंपनी का नाम लिया, तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम,
1: नो,
0: आप उनके एजेंट नहीं है,
1: नहीं, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है,
0: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है, ये आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं, राइट? तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
1: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
0: जी,
1: वो 2 साल के लिए लंदन गया था,
0: ओके,
1: तो उसने बुलाया मुझे, तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का, क्रिस फ्लायर कार्ड, जो अब नहीं है,
0: ओके,
1: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
0: जी।
1: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे,
0: ओके,
1: अब एज यू डू आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
0: जी।
1: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है। इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था,
0: ओके।
1: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे।
0: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया, ओके,
1: क्योंकि मैंने अपने लॉग इन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है क्या है, तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000, तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है, देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए, हो गए तो वहाँ पे चीज लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम, बटन दबाया, बैठे हो बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल, 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
0: जी।
1: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में,
0: पॉइंट खत्म हो गया
1: पॉइंट ही नहीं अब आप खुद सोचो आप इतनी चौड़ी आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की
0: जी जी जी
1: ठीक है
0: जी
1: इतनी चौड़ी होती है
0: जी
1: राइट और इकोनॉमी कितनी होती है
0: हाँ,
1: आपको ऐसे खाना पड़ता है
0: मेरा तो ज्यादा ही बुरा हाल होता है
1: आप अपने ये हाँ
0: यस
1: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
0: जी
1: ठीक है तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स लिटरली टीयर्स में था तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है इसको पढ़ना है तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए
0: ओके
1: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया एक फ्रेंड की हेल्प करी तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर उसके बस 1 million पॉइंट्स थे लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स
0: क्या बात है भाई रॉकस्टार में था टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू
1: जी पहली बात तो ये है कि देखो पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
0: जी
1: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
0: जी
1: ठीक है मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी between 30 and 60 years of age so they have lived their first half of their life aur logon ko hota hai ki yaar main apna second half to kam se kam thoda sa comfort mein bitaun to jab hum itne paise kharch kar rahe hain itni outgoings ja rahi hain agar ek tarika hai usko maximize karne ka bina paise kharch kiye abhi organic points ki baat ho rahi hai humne business ki baat to kari hi nahi zyada theek hai agar ek tarika hai to maximize it तो आप क्यों ना करो स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं ठीक है नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे फेसबुक हो चाहे टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो एंड यूट्यूब ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी वेयर डू वी टर्न लेफ्ट इनटू बिजनेस एंड फर्स्ट तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया टर्न लेफ्ट फॉर लेस तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं इस महीने वो 24th जून को है देन द वेबसाइट एड्रेस इज एल पी ठीक है एल फॉर लीमा पी फॉर पापा LP जैसे लैंडिंग पेज होता है ना lp.turnleftforless.com
0: जी
1: और लास्ट थिंग अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके अगर वो रेडियो हांजी करके लिखेंगे आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन
0: इसलिए तो बुलाया कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें फ्री कंसल्टेशन ले एक बार और फिर बाद में जैसा आपका मन माने वन ऑन वन करनी है जी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है एपिसोड कैसा लगा और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा और आपकी लाइफ में कोई खास तब्दीली आई या नहीं आई कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट मैं हूं कृष्णा टेक केयर बाय बाय देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM

फिल्म देख के नहीं, क्या होया वाओ है जवानी तो इश्क होना है। वैसे ये ट्रेलर ने वधिया, मतलब बाकियों के नालों तो ठीक ही लगे यदा ट्रेलर। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, मृणाल करके शायद देख लव जे देखनी हो गई कदे। पूजा हेगड़े इस फिल्म के है कि फिल्म कदों कदों रिलीज़ हो रही ने, आओ कैलेंडर के उत्ते झात मार लें। प्रोग्राम पढ़ा बे पढ़ा दे, ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है जी। रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते मैं वापस आऊँगा, नहीं मैं आ गया पर फिल्म मैं वापस आऊँगा अज आ रही हैगी। सो अज के दिन यह फिल्म रिलीज़ हो रही है जिदे दिलजीत दोसांझ ने, शर्वरी वाघ ने ते मुंडा वेदांत, बड़ा वधिया काम किया है इन्होंने। एक 95 साल का बिरध व्यक्ति जिदा किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है, तो किस तरीके दे नाल वह अपनी कहानी दसद, वो जुड़त जी हैगी दसद, तो वह जरा बेटा हैगा, बेटा नहीं पोता, वो पूरी की पूरी कहानी जी किमें सुनता। हूँ तो वह चंडीगढ़ के रह रहे, पर एक मोटा मोटा जहा सैनोपसिस है इस फिल्म का। तो मैं वापस आऊँगा, फिल्म देखियो, देख के दस्यो किमें दी हैगी। अज ही रिलीज़ हो रही है हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ पास्ट। वैसे तो मैं जिहड़ियां इंग्लिश फिल्मों का जिक्र अड तो करूँगा, पर हॉन्टेड जिहड़ी आ वो सुन के तुहानू लगेगा कि इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश नहीं हैगी, हिंदी फिल्म हैगी है। तो इंग्लिश फिल्मों का भी जिक्र अगे चल के स्पाइडरमैन का दसदा। एक होर फिल्म जिदे बारे बहुत वधिया रिव्यूज आ रहे हैं, वो है गवर्नर। मनोज वाजपेयी की यह फिल्म हैगी है, और ये बड़ा चर्चा हैगा इस फिल्म का, क्योंकि कहा जा रहा है कि गवर्नर एक ऐसे बंदे की स्टोरी है, 1990s की स्टोरी है, पीरियड ड्रामा मूवी हैगी है। रमनन नाम का उन्होंने एक IAS ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं मनोज वाजपेयी, जिहड़े सेंटर गवर्नमेंट दे लई काम करते हैं, तो सेंटर गवर्नमेंट उन्होंने एक बार सम्मन करती है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के कहे दे उत्ते। ते राष्ट्र वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बट ये उन्होंने राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया करता, तो RBI के गवर्नर बना के उन्होंने लिया जाता है। तो किस तरीके दे नाल इंडिया का जिहड़ा फॉरेक्स है, जिहदी अजकल गल हो रही है कि घट रहे है, घट रहे है, तो वह बंदे ने किस तरीके दे नाल फॉरेक्स, मैनू पूरी स्टोरी नहीं पता हैगी, बट जस्ट मैं थानू एक जिस्ट दे रहा है इस फिल्म के बारे कि यह हैगी है। पर एक्टिंग ते जो उस दे विच डिटेलिंग यूज़ की गई है उन्हों लैके कहा जा रहा है कि हाँ बड़ी कमाल दी फिल्म हैगी। अज एक होर फिल्म भी है जिदा जिक्र पहला होया भी सीगा, पर हुण अजकल उहदी कोई गल करदा नहीं हैगा, मैनू पता नहीं है वाकई रिलीज़ होगी भी कि नहीं होगी, हैगी अज ही रिलीज़। वो हैगी है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। हुण उहदी पता नहीं क्यों कोई गल ही नहीं हो रही हैगी, खुद कंगना ने भी नहीं कोई रौला पाया हैगा। अगले हफ्ते 19 जून नू कॉकटेल, जिदे बारे पहला आपां गल कर चुके हैं, Part 2 इहदा रिलीज़ होना। तो बच्चों के लिए जिहड़ी वेलकम टू जंगल नहीं हैगी, वो तो अगले हफ्ते 26 जून नू। बच्चों के लिए दो फिल्मां ने, एक तो टॉय स्टोरी Part 5 इहदा रिलीज़ हो रहा है, वह 19 जून नू रिलीज़ हो रहा, तो दूजी जिहड़ी भारत दे विच रिलीज़ हो रही है 30 जुलाई नू, वह है स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे। आस्ट्रेलिया दे विच भी हो जानी है वैसे, 31 जुलाई उहदी डेट हैगी आस्ट्रेलिया च, इंडिया च पहला पता नहीं क्यों रिलीज़ कर रहे हैं। स्पाइडरमैन सीरीज़ की 4th फिल्म हैगी है, तो 3D दे विच रिलीज़ होनी हैगी है। सो बच्चों के लिए उदों तक मेरे ख्याल दे नाल जुलाई दे विच तां साडियां छुट्टियां भी मुक जाणियां भाई बच्चों दियाँ, उदों काते उह लैके आ रहे हैगे ने। इस तों इलावा जिहड़े आने वाले दिनों दे विच, जिहड़े 26 जून नूं वैलकम टू जंगल, तो फिर उस तों बाद जुलाई का महीना, जुलाई महीने च अल्फा का जिक्र मैं कर चुके हैं, 3 जुलाई नूं रिलीज़ होनी है आलिया भट्ट वाली फिल्म। तो उस ही हफ्ते दे विच कोई होर बड़ी फिल्म है नहीं, हाँ इंग्लिश दी ईवल डेड जरूर आ रही है। छोटे होंदे हुए बचपन दे विच बड़े सारे ने जिहड़े 80s दे 90s दे जमे हुए ने, उन्होंने पहली हॉरर जे शायद कोई फिल्म देखी हो ईवल डेड होएगी, उहदा ही पार्ट है अगे चल के। उस दौर दे विच इह 90s दे दौर दे विच ईवल डेड ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई सी हॉरर फिल्मों के, और कमाल दी डरावनी फिल्म सी। अज दी डेट दे विच भी तुसी देख सकते हो, हाँ टेक्नोलॉजी नू माफ़ कर दियो, कुछ क चीज़ां नू साउंड इफेक्ट नू माफ़ कर दो, पर उस समय के मुताबिक बड़ी कैंट फिल्म सीगी। हो डेट
ਦਮਾਲ ਚਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 July ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਫਿਲਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਆਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ 30 July ਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਾਪਨ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੋਰ ਬੋਥ ਮੂਵੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਨ ਹੋਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਸਤਰੀ 2 ਅਤੇ ਬੇੜੀਆ 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਵਾਰਾਪਨ, ਹਾਓ ਕੈਨ ਵੀ ਨੋਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਖੋਸਲਾ ਕਾ ਘੋਸਲਾ ਵੀ ਪਾਰਟ 2 ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 August ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3 ਹੈ, 2 October ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, 2 October, ਪਣਜੀ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਤੱਬੂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹਾਂ ਰਮਾਇਣ, 8 November ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲਮ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਵੈਂਜਰਸ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਓ, ਅਵੈਂਜਰਸ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਣਾ, ਅਰਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ।

कल ही सविताज कहता मैं ये कुड़ी भी है जड़ी यार जाली डिग्री फॉर समथिंग समथिंग एक वो तो पॉपुलर हुई सी जैसमिन जैसमिन बाजवा वो भी हैगी है ते गाना देख के पता लगता भी कि अच्छा गिपी गरेवाल का फरजंद भी है ते हुण कुछ पंजाबी गाने जड़े लेटेस्ट आए हैगे ने वो भी तुहानू छड़दे हुए चली है जी ते फिर तुहानू एक इम्तियाज अली होरां दी एक इंटरव्यू भी सुनानी हैगी है बैक टू बैक कुछ लेटेस्ट गाने भी तुहाडे तक छड़ के जाने पहला सुनंदा शर्मा का गाना सुन लो जोगी

0: पोला
1: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: पोले ने कसूते फसाते
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए 2

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: लादे फेरे।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
1: देखो सच बता दो
2: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
0: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
3: वाले बाबू मेरा गाना चला तो
4: ससिकाल शुभ बादशाह ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो हांजी

0: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला
1: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए 2
3: भोला भाई
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे
4: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। This station is now the ultimate power in the universe.
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: Imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना? तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन।

0: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स स्टनविच वी तुहाडी सेवा विच हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
1: देखो सच बता दो
2: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
0: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधू पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: बोला
1: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: पोले ने कसूते फसाते
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए 2।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो।
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: G, 1674 AM.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio
2: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney का अपना Indian Radio Station.
1: Radio Hanji,
0: stay tuned.
3: लाओ जी तोड़ी नजर है, बोला.
4: ओए पोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद, गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म.
5: पोले ने कसूते फसाते.
4: ओए पोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घर विच देखना ना भूलियो. ओए पोले ओए टू
6: भला भाई
7: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई. एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा.
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो।
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने इक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice.
2: Hiya!

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. You are listening.
1: Hanji Hanji, Hanji Hanji, Hanji Hanji, Radio Hanji.
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji.
2: Stay tuned.
3: ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ। ਟੁਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸਵਿਚ ਟੂ ਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਕਾਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੇਦਾਂਗ ਰਾਇਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ਰਵਰੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਲਿਟਲ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੈਸੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ?
4: ਹਾਂਜੀ
5: ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਨ ਲੋ ਯੇ ਲੋ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹਾ
3: ਹਾਂ। ਓਕੇ
5: ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ।
3: Likewise sir, likewise. मैं शुरुआत करता हूँ पहले, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी स्टार कास्ट, तो I'll first speak with the star cast, that is वेदांग जी एंड शर्वरी जी, कैसा रहा अभी तक का सफर? You both are fairly new to this world, I would say, है ना? और कैसा रहा ये मूवी का एक्सपीरियंस, बनाने का एक्सपीरियंस आप लोगों का, और what are you seeking out of it now, ki kya lagta hai kya aage jaye kya banne ki baat?
6: Hum kal hi baat kar rahe the ki kyunki abhi hum ye film humne wrap kari thi shayad December mein, aur uske baad hum dono ne you know ek aur film ki shooting start kari hai, lekin hum kal baat kar rahe the ki hamara time jo Punjab mein humne bitaya shooting ke dauran aur even on the off days jo humne time bitaya Punjab mein, usme hame itna maza aaya, and it was such a great experience. And I think we both love, all three of us really love,
4: yeah,
6: love Punjab. And of course, sir ke saath movie shoot karna, it's like a dream come true. Aur touch wood, hamara experience bahut hi acha raha.
3: Also, this early in the career, agar aap itna acha aur itna bada project helm karte hain, usme lead star karte hain, what's the mind mein aisa kya chal raha hota hai? Agar mera poochne ka ye point shayad ek jo abhi bhi aspiring actor hai jo is lens se dekh raha hoga aap logo ko, to how would he feel, unhe kaise, how to maneuver the pressure, aur kaisa tha pehla din set ka aap dono ke liye?
6: Actually, ye pressure agar hum dekhe to endless hai. क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पार्ट होना ही एक प्रेशर है, इम्तियाज सर की फिल्म में होना, फिर आप देखते तो रहमान सर का म्यूजिक है, कास्ट में दिलजीत सर है, नसीर सर है, तो ये खत्म ही नहीं होता है प्रेशर। लेकिन आई थिंक हम जब सेट पे जाते हैं, हमारा काम है वो भूल जाना और फोकस करना, एक सैटिस्फाइंग डे, मतलब हमारे गोल्स छोटे हो जाते हैं। बिगर, एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा बिगर पिक्चर ना देखूं जब तक शूटिंग प्रोसेस खत्म ना हो जाए। अगर कोई एस्पायरिंग एक्टर है, मुझे लगता है मैं अभी भी एस्पायरिंग एक्टर ही हूँ, मैं उस माइंडसेट से हटा ही नहीं हूँ, मुझे लगता है अभी भी मैं वही हूँ जो ऑडिशन दे रहा था 2-3 साल पहले। तो बस यही कहूंगा कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग
3: एंड कीप डूइंग। बढ़िया। शर्वी जी, आप कुछ इसमें ऐड अप करना चाहेंगी?
4: जी, आई
3: थिंक हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑन द सेट?
4: माय फर्स्ट डे ऑन सेट वाज एक्चुअली अमेजिंग, बिकॉज मेरा जो पहला दिन था, एक्चुअली उसी दिन मुझे, मेरा एक ही दिन था एक्चुअली नसीर सर के साथ शूट करने का, और मुझे एक्चुअली वो मौका मिला था। सो मेरा फर्स्ट डे थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी था, थोड़ा नर्वस था, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं नसीर सर के साथ स्क्रीन शेयर स्पेस
3: कर पा रही है, होता है फंबल, वी ऑल फंबल, इट्स फाइन। नहीं, बढ़िया मैडम, बढ़िया,
4: स्टॉप। बट ऑनेस्टली ये मौका बहुत बड़ा था और उनसे सीखने भी बहुत मिला एक्चुअली बस कुछ थोड़े ही समय में. और हम जब एक्चुअली पंजाब में शूट भी कर रहे थे तो मैं इससे पहले पंजाब गई नहीं थी कभी भी. पहले मैं एक्चुअली जब ये फिल्म मैं करने वाली थी उससे पहले मैं अपने मॉम के साथ पंजाब गई थी जस्ट बिकॉज मुझे वहां जाके घूमना था, वहां के लोगों से मिलना था, खाना खाना और मुझे बहुत पसंद आया. और उसके बाद जब प्यास से रेकी पर जा रहे थे तब मैंने और वेदांत ने डिसाइड किया था कि हम उनके साथ टैग अलोंग करेंगे और हम भी रेकी पर चलेंगे. और आई रिमेम्बर हम पहले ही दिन गोल्डन टेम्पल गए थे और वहां पे हमने ऑलमोस्ट 3-4-5 घंटे बिताए थे. हम बस बैठे हुए थे और हम बस दुनिया की बातें कर रहे थे. हमने सनसेट भी देखा था और फिल्म की बातें कर रहे थे. बट समवेयर हमारे मन में हमें ऐसा लगा था कि हमारा जो शेड्यूल शुरू करने से पहले हमें ना से लगा था कि कुछ ब्लेसिंग्स ही मिल गई थी हमें. और आई थिंक हम वो फीलिंग लेकर हमने बस फिल्म स्टार्ट की थी.
3: अमेजिंग. इम्तियाज सर आपसे सवाल है मेरा कि आपने इरशाद कामिल साहब, ए आर रहमान साहब के साथ और आप तीनों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम हम सभी को दिया. अगर हम रॉकस्टार की बात करें या फिर लेटेस्ट चमकीला की भी बात करें तो ये आपका हाउ डज योर प्रोसेस गो. तो जब एक जर्म आ जाता है कहानी का तब से ही आपके साथ ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि वंस यू आर डन विद योर स्क्रिप्टिंग एंड ड्राफ्टिंग तब आप आगे जाकर उन्हें इन्वॉल्व करते हैं. हाउ डज
5: जब वो जर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो जर्म बीमारी की शक्ल लेने लगता है जब पता चल जाता है कि इन्फेक्शन अब हो चुका है तो जिस स्टेज पर भी स्क्रिप्ट होती है उसकी मैं फिक्र नहीं करता. मैं रहमान सर से वो इन्फेक्शन शेयर करता हूँ, वो आइडिया जरूर शेयर करता हूँ और डिस्कस करता हूं कि ऐसे उनको बहुत सारी ऐसी भी कहानियां मेरी पता है जो अभी तक फिल्म बनी नहीं है बट उनको पता है कि उनपे काम कर रहा हूं. सो थोड़ा अर्ली मैं उनसे डिस्कस करता हूं, फिर उनके आइडियाज भी होते हैं जो म्यूजिकल होते हैं या विजुअल होते हैं. फिर इरशाद भी आते हैं पिक्चर में, फिर हम तीनों यूं ही बातें करते हैं बहुत ज्यादा और फिर धीरे धीरे वो स्क्रीन प्ले बनता है. धीरे धीरे मैं उनको और चीजें बोलता रहता हूँ दोनों को, कहानी के पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में, किस तरह से कहानी चलती है उसके बारे में. एंड लास्टली वी कम डाउन टू हमको किस तरह के गाने चाहिए. सो बाय द टाइम वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉन्ग्स क्या होता है ना कि उनको ऑलरेडी वो फिल्म की तरफ से आ रहे होते हैं ऑलरेडी. ये नहीं होता है कि ये एक गाना हमें बनाना है तो इसके बाद हम रिसर्च शुरू करें कि फिल्म क्या है और कैरेक्टर कैसा.
3: ओके ओके. माय पर्सनल फेवरेट हैज बीन वो नहीं सॉन्ग. अच्छा. और जो उसमें शायरी का एलिमेंट है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी राइटिंग भी लेकर आ पा रहे हैं तो उसके लिए तो एक तो थैंक यू सर आपका. मेरे एक्चुअली बातें तो आपसे बहुत लंबी चौड़ी करना चाहता हूँ बट आई एम ऑन अ स्पीडोमीटर क्या कहते हैं जो भी होता है उस पर हूं मैं. अंग्रेजी थोड़ी इधर उधर है भले ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं. अनदर क्वेश्चन कि दिलजीत के साथ आपका एक और कोलैबोरेशन रहा है, हाउ इज ही वर्क वाइज, आपको कैसा, हाउ डू यू, व्हाट्स द वर्क कल्चर बिटवीन यू गाइस, और आगे और भी कोई हम देखें. मुझे लगता है कि अभी इस मूवी में उनका कोई खासा लंबा रोल है कि नहीं है कि इट्स अंडर द कर्टन्स. सो हाउ वाज इट
5: इसमें ऐसा था कि जब मैं चमकीला कर रहा था तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि यहाँ सेट पे दिलजीत दोसांझ है. तो जब मैं वापस आऊं का कर रहा था उनके साथ तो ऐसा नहीं एहसास हो रहा था कि चमकीला इस सेट पर. ये सारे लोग अलग अलग हैं और ये दिलजीत दोसांझ की बहुत बड़ी खूबी है कि जब वो किसी कैरेक्टर में होते हैं तो किसी और दूसरे कैरेक्टर की का सेंट नहीं होता उसके अंदर. तो हर बार एक फ्रेशनेस, दोनों बार एक फ्रेशनेस मुझे नजर आए और एक प्योरिटी है उस इंसान में, उस कलाकार में, जिसकी वजह से दोनों बार एक बहुत इंस्पायरिंग वर्क एटमॉस्फेयर था हमारा. मतलब आई थिंक सबसे बड़ा लंबा रोल उन्हीं का है इस फिल्म में शायद, उनका और वेदांत का. एक्चुअली हम लोगों ने नोट किया था कि शायद एग्जैक्टली उतना लंबा है. सो ऐसा नहीं है, उसमें उन्होंने गाने भी, एक गाना भी गाया है पिक्चर में
3: जी,
5: एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका भी, बट ये एकदम नया कैरेक्टर है, अलग, बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, जिसकी झलक खुद मतलब चमकीला, और इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है उनके किरदार में।
3: सर एक अगर मैं जब वी मेट की बात करूं और फिर लव आजकल के ऋषि कपूर साहब हो गया, या फिर जो सैफ का कैरेक्टर था ओल्डर टाइम का, फिर चमकीला, और अब मैं वापस आऊंगा पंजाब कनेक्ट, पंजाबी कनेक्ट, ये कोई दिल से आता कनेक्ट है कि ये आपका सुपरस्टिशन है कि भाई लकी चार में अगर पंजाब कनेक्ट डालूंगा तो फिल्म बम्पर ही जाएगी?
5: किसी भी बहाने, चाहे सुपरस्टिशन के या लकी चार्म मान के, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पंजाब जाऊं जरूर, एंड क्योंकि वहां पे वो सफेद मक्खन होता है ना, चिट्टा, वो तो आपको पता हो तो कहीं नहीं होता वैसा, उस वजह से मैं जाने की कोशिश करता हूं, जो अभी भी पिंड में और कहीं ऐसी खास जगहों पे अच्छा वाला मिलता है। बट आई थिंक दैट जब भी मैंने पंजाब में कोई काम किया है तो फिर उस काम को करते हुए कोई दूसरी कहानी भी नजर आई है, और शायद मैं उन चीजों को बेहतर देख पा रहा हूं, या जब उन चीजों के लिए ज्यादा फील करता हूं, बट आई फील दैट आई रिसीव समथिंग, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिलता है वहां से, वहां के लोग अप्रिशिएट करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। जब मैंने जब भी मेट की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी, पंजाब के लोगों को इतनी पसंद आएगी, मैं कोशिश कर रहा था कि पंजाब को गलत ना दिखाऊं, मैं कोशिश कर रहा था कि समझूं कि किस तरह से टर्बन बांधनी चाहिए, या किस तरह से एक हर जगह की तहजीब कल्चर अलग होता है
3: जी,
5: तो लोगों को पसंद आए तो मुझे भी बढ़ावा मिला, सो ऑन एंड सो फॉर। फिर मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है कि जो टर्बल्ड सिख होते हैं वो हीरो नहीं होते?
3: एक्चुअली ये हमेशा हम लोगों को भी बीइंग पंजाबी से रहा है कि साइड के क्या फिर होता है ना कि स्टीरियोटाइप रोल हो जाएगा, या तो खुददार सब कुछ मैं बचा लूंगा, या फिर है ना कॉमिक तो सरदार को लाइक एनी अदर गाय दिखाना, उसके लिए इट्स ह्यूज थैंक यू टू यू। और पंजाब से आप दोनों की तरफ सवाल है, कुछ पंजाब से कोई स्लैंग कोई वर्ड्स वगैरह पिक किया आप लोगों ने?
4: हमने
6: यहाँ बता नहीं सकते,
3: मैं थोड़े नाल हौली हौली गल्ला कर सकदा, पर जेडे ऑर्गेनाइजर ने वो तेज तेज मेनू कट
4: कर
3: amazing, best of luck to you guys.
4: Thank you.
3: Taylor is amazing. जाने से पहले मैं एक इम्तियाज अली साहब आपको कहना चाहूंगी, किसी ने कभी कहा था, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपकी लाइफ में कभी किसी ने जादू किया हो तो उसे मिले तो कभी थैंक यू जरूर कहना। थैंक्स फॉर तमाशा, तमाशा ना देखते दिमाग में ना आती तो शायद आपसे आज इंटरव्यू पे बात नहीं कर रहे होते, सो थैंक्स अ लॉट। और आप दोनों के मैं सबसे मेन वर्ड जो हमारा पंजाबी का उसके साथ छोड़कर जा रहा हूं, इनफैक्ट सारी टीम को, चढ़दी कला, सो चढ़दी कला टू ऑल ऑफ यू, आई होप मूवी डज वेरी वेल, थैंक यू, थैंक्स
7: माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
8: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: और जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
8: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
9: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
10: देखो सच बता दो।
11: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
9: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु, पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
12: इतिहास जो सानू

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हाँ जी 1674 AM

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। It's a unisex song.

हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: तेनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
2: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर। रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।
3: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
4: Oh my God, this is original.

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: You are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
4: You don't wanna settle, you move this, 'cause I beautiful. You don't wanna settle, you move this.

0: तय हृदय सब धर्म
1: संजना सुने सु बचन सर्वव्यापी राम संग रचन
0: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभु जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार
1: अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कही है दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगा जिसे आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रहे जो कुछ कहना सु आप ही कह
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए
1: इसते हुए सुना ही बुरा उरे कहो हो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भग जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्या गोतरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो
1: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दुमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलिक लाल एह रतन
0: संत कमावत हो तो उदार आप तरह लोक कह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कह साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संगलैन
0: सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव
1: आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते
0: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी
1: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस है सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कह मद सगल ते उदास
1: सुंदर चित तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
0: ते फल तिस जन कह मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
1: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्री तिस जन आवै हर प्रभु चीत
1: मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै
0: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम
0: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौ

कर्मखंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

गुरु की संगत, आप आत्म रस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए।

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti, and welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein hum baat kar rahe the about victim kaun hai aur
1: master kaun
0: hai. Master kaun hai. अभी आपने जिस चीज को मैं अभी तक मास्टर समझता आ रहा था उसको विक्टिम बोल दिया. अब 360 डिग्रीज का चेंज है मेरी थिंकिंग और आपने जो सिखाया उसमें.
1: विक्टिम मीन्स कौन? स्लेव मीन्स कौन? जो गुलाम है. जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का, और एक है जो अपने मन का गुलाम है. जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जिस तरह चलाए वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है. जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है. और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है. सी, वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक,
1: चलो ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ.
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते. एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. And at that time I say, you irritate me. Right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है. ये बहुत irritating है. ये बहुत irritating है. या ये मुझे irritate कर रहा है. Means, कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है. राइट? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर. या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं. मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन. ठीक है, दो चीजें हो रही हैं. ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए. तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड? वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से. ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना. दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं. तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए. या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ. आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है.
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा ना.
1: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा.
0: मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा. मुझे लग रहा है कि माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, खर खर खर खर खर खर, अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं.
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है. अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है, तो किसी का मोबाइल बज जाता है. अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए. ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में है, मेडिटेशन में है, मंदिर में है, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे. ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड. अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं. एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए. दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग. आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस.
0: आई वांट
1: पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम. अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
0: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
1: हाँ, ये सब चीजें, हाँ. ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
0: कि थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें.
1: राइट, कितनी सारी थॉट्स. सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना. आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की. व्हाट इज द इरिटेशन? हियर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. लेट अस चेक, व्हाट इज द इरिटेशन? द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स व्हिच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज.
0: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप, मुझे वो चीज, मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहा है.
1: वो
0: मैं नहीं कर रहा हूँ.
1: एक प्लास्टिक का पैकेट, एक बॉल पेन का टिक टिक,
0: डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी.
1: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी. थॉट कहाँ क्रिएट होती है?
0: मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसके इरिटेशन.
1: यहाँ क्रिएट हो रही है ना?
0: हाँ, मेरे मन,
1: मेरा मन कहाँ पे? यहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. बॉल पेन टिक टिक हो रहा है
0: वहाँ.
1: मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. किसने क्रिएट की?
0: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने.
1: बट उस बॉल पेन,
0: इनके बिहेवियर ने,
1: इनके बिहेवियर यहाँ है. आपका बिहेवियर यहाँ है.
0: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना?
1: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना. अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है. यहाँ वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा.
0: उसकी वजह से हो रहा है.
1: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है?
0: कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की? आपने बोला कि आई क्रिएट, आई चूज, आई एम थिंकिंग.
1: आस्क आवरसेल्फ एंड लेट्स चेक इट इमीडिएटली. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में. बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे.
0: कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है.
1: राइट.
0: तो
1: अलग अलग थॉट्स ना. तो वो है एक प्लास्टिक, हरेक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया.
0: जी.
1: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट?
0: अलग अलग आदमी ने.
1: क्रिएटर कौन है वो फाइनल?
0: मैं क्रिएटर हूँ.
1: प्लास्टिक
0: मुझमें क्रिएट हो रही है,
1: ये पक्का?
0: ये नहीं ना कि वो प्लास्टिक, और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ.
1: वो भी कोई बात नहीं. इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चुर चुर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है. वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग. That is irritating.
0: That person is also irritating.
1: That person is also irritating. Because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है, वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन. ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है. उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है. यहाँ तक सीमित है. कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा, यू नो, लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल, सी दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ.
0: दस सेकेंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला जब आप बात कर रही थी, तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई। वो तो एक्सेप्टेड था ना,
1: एक्सेप्ट
0: क्योंकि हम जंगल में हैं,
1: राइट।
0: चिड़िया बोलेगी, कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी,
1: राइट।
0: तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली,
1: बोले एक्सेप्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे, नॉट एक्सेप्टेड।
0: अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ।
1: हाँ, ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं?
0: अपने आप को, अपने मन मन में दूसरे को दे रहे हैं।
1: दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं? यू आर द कॉज ऑफ माई पेन।
0: करेक्ट।
1: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट इज कॉजिंग मी पेन। आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन लाइफ, प्लीज चेंज। ये इक्वेशन हमने बना ली जीवन की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं?
0: यही,
1: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना।
0: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है।
1: वो भी ठीक है, अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है,
0: बट इरिटेटेड नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको। लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
1: वो भी इरिटेशन।
0: देखो,
1: सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो भी
0: तो लिफ्ट दूं।
1: नहीं नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अब ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
1: ब्लेम किया। उसको किया,
0: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा, कर्टेसी नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं, परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइंस आर सो ब्यूटीफुल। उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
0: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
1: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
0: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया।
1: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया, सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स। लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल?
0: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना।
1: मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है।
0: प्रैक्टिकल में देखो, आप
1: प्रैक्टिकल में
0: आप यहाँ बैठे हैं, धूप लग रही है,
1: राइट,
0: तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है,
1: परफेक्ट,
0: और छांव में जाओगे बोलेंगे कितना ठंडा, अच्छा है,
1: परफेक्ट
0: बोलेंगे। इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोले सब कुछ बुरा लगा।
1: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी देर में
0: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए।
1: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है। उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई, कि शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है। अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना?
0: नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी।
1: अब वो बात गई,
0: वो गई,
1: अब वो थॉट गई। अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर। हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की। जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्युलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए। अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडेज स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड आई केप थिंकिंग, एंड मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल? द मार्केट। यू नो, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है। उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर, अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई, अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात, फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया। लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी, उसमें इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
0: सब हिला दिया था,
1: हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया। ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई, तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
0: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो।
1: यस,
0: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ,
1: right.
0: वो मेरा 1-0 से शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 61-62 शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 0-10 नहीं होगा,
1: नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी
0: 75 आना है तो 60+75 होगा।
1: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट, एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है। उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है, अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे,
0: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक और प्रॉब्लम,
1: गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट। अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे, और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए
0: सिर्फ कि
1: फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन। तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस। लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड chaos. Why today we said that there is chaos in our mind? क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो challenges बड़े कि family में कोई health, business में कोई crisis, रिश्तों में कोई crisis, ये कभी कभी आता है जीवन में, सिर्फ ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार।
0: लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का,
1: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी, दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ इन बिग सिचुएशंस। हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। लेट अस ओनली
0: शुरुआत कैसे करें,
1: छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें में
0: चिप्स वाली बात, चिवड़े वाली बात, वो कुरकुर
1: वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रख दी या जोर से दरवाजा,
0: भाग के दूसरी को सीट ले लें, भाग जाए, क्या करें,
1: वही बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट, लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता, अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो, शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर दो थॉट्स क्रिएट कर लेना, दैट्स ऑल दैट वाज नीडेड, 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने, वो ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज।
0: चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही, आवाज बंद हो जाएगी,
1: नहीं
0: भी
1: आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
0: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
1: तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माय कंट्रोल, ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट, जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूं गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी, अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता, कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया. चूज कैसे करना, दैट्स अ सेकंड पार्ट. फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली हु इज द क्रिएटर ऑफ माय थॉट, एंड फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर आर नाउ वी गोइंग टू से दे आर इरिटेटिंग, दे इरिटेट मी. नो, गेट इरिटेटेड, बट नाउ द लैंग्वेज विल हैव टू बी आई क्रिएट इरिटेशन इन रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर. सो ये अब इंटरेस्टिंग गेम हमें सारा दिन खेलने हैं कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, दो एंटिटीज है.
0: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
1: गेम है ना, दो चीजें हैं.
0: मेरे कान में दर्द होता है वो देखिए, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है.
1: चलो इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए. हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट राइट. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माई माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब.
0: इसको एक बार बोलूंगा, हाँ. पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, मेरी भी कुर्सी.
1: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे. ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे. आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस को हर समय अब सारा दिन आज रखना है. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे. एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन टच कर रहा है, कोई लेट आ रहा है.
0: छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं.
1: ठीक है,
0: अब उसको कैसे बोलूं कि भाई मत डाल, पूछ तो लो.
1: हाँ, कैसे बोल सकते हैं?
0: एक बार बोला, हाँ. नहीं नहीं नहीं, आपको खाना है बहुत मजे की, तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई.
1: हाँ.
0: हाँ, मुझे चावल खाने, रोटे दो, अब घी वाली खा लो एक रोटी.
1: ठीक है,
0: अब ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे. आप पता नहीं क्या आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं. बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन मुझमें है.
1: नो नो, वी हैव टू वेरीफाइन व्हाट्स द सोल्यूशन. लेट्स आस्क मी, आई आस्क माई सेल्फ, व्हाट्स द सोल्यूशन.
0: सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, बर्दाश्त करते रहो.
1: नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो. सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ. लेट्स से आप यहाँ हैं, ओके, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ. सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू
0: जी,
1: इवन इफ आई फील दिस इज
0: ईजियर. चलिए, पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ
1: में. मैंने नहीं कहा कि आप इरिटेट हो रहे थे. हाँ, तो आप इरिटेट नहीं कर रहे थे,
0: और आप इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है. मैं पहले तीन एपिसोड्स में मैं चिल्ला तो रहा था.
1: अब
0: आप कैसे शांत थे ये मुझे समझाइए ताकि मैं भी सीख लूं आपसे.
1: Because
0: आपने वही प्यार से ऐसे ऐसे ऐसे मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जीजी होती है, ये सब क्या जादू है ये?
1: क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था.
0: जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे.
1: जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में. पहले हम सिचुएशन में देख लें. सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं,
0: बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा था.
1: ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन. तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है. या तो एक, आपको कंट्रोल करो. आपको कंट्रोल करो मीन्स आपको बोलो, डोंट टॉक लाइक दिस टू मी,
0: डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग,
1: डोंट डिस्टर्ब,
0: ताकि मेरा फ्लो टूटता है. आप इतना तो बोल सकते थे, वो भी नहीं बोला आपने.
1: आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं. दो ऑप्शन, एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है. अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट. अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो मैं आपको बोलू प्लीज डोंट डिस्टर्ब. फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए.
0: लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं और मैं बोल देता हूं कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूं, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है, रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं कुछ नहीं बोलू ना,
1: राइट। अब इसका मतलब नहीं, बट इसका मतलब
0: ये भी दो दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया।
1: दैट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है, अवेयरनेस नहीं होगी। इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया, अवेयरनेस नहीं है। 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है। अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे, तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है। ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें। दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर, देन आई विल गिव इंस्ट्रक्शन देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें
0: क्या ये हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दूं फिर उसको जरूरत ही ना पड़े वहां देने की?
1: नहीं, अगर आपका रोल है एज अ पेरेंट सपोज, एज अ टीम लीडर सपोज, सपोज आपकी गाड़ी में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है एंड इट डजंट गो वेल फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन अ सिंपल थिंग लाइक इट्स नॉट नाइस फॉर मी,
0: तो आई वॉन्ट टू से
1: आई वॉन्ट टू से इट टू द अदर पर्सन, लेकिन गेट इरिटेटेड एंड देन से इट, तो फिर बात यह हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी चीज ये है, मैं ठीक हूं, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए
0: वातावरण खराब होता है मेरे।
1: टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये चीज सारा दिन देखनी है। कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
0: वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको, सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको
1: इंस्ट्रक्शन भी देना है। हाँ,
0: तो भी आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती।
1: एब्सोल्युटली। एंड व्हाई यू गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर। दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर योर पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी पीसफुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: हम इजंट इट फॉर माय पीस?
1: नो, यू आर ऑलरेडी पीसफुल बिकॉज यू डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड।
0: अच्छा, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा दिया।
1: कंट्रोल मतलब आई डिड नॉट गेट फ्लक्चुएट, आप मुझे नहीं फ्लक्चुएट कर पाए,
0: तो मैं इस वक्त काम और पीसफुल और स्टेबल हूँ।
1: हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है, तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माय पीस ऑफ माइंड। My peace of mind not dependent on them. मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनूं। जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं। पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो, तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई? That's a slave. Slave to people's behavior.
0: पहले slave to yourself भी तो हो गए।
1: जो slave to yourself है वही तो फिर slave to people's behavior. तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक।
0: वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर। मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है, तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: हाँ जी।

के मोरे सजनी जान जान बाग दान जान बाग उनके मोरे सजनी जिन आए सो सुंदर प्रीतम पा।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ज्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार, ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़िया इदा फड़ लिया कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना। तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं, हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर दो साल में एक बार या एक साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता है।
0: और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना, तो एक
1: मिनिमम चार लोग,
0: है ना। तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए। और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट। समझो अगर चार लोगों की फैमिली और अगर ऑन नहीं करना तो उस पर भी चल सकता है,
1: प्रीमियम इकोनॉमी तो और भी इजी है।
0: हाँ, तो आप इस पर पहले, हम पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए।
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट। 9 बजे सुबह बोलोगे कर सकते हैं,
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी,
1: इज इट ओके?
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: सो पहला एग्जांपल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीस पे, बुलवर्ड्स पे
0: जी,
1: ठीक है। बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है,
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है।
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं यार $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं, वो एक्चुअली फ्री है।
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है,
0: कैसे,
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना।
0: अच्छा, तो
1: फ्री हो गया ना,
0: तो काफी
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लोग जाते हैं, और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल, तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी, जी,
1: ठीक है। तो दिस इज एट द बेसिक लेवल। तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वुलवर्ड्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, जेबी हाईफाई से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स है, एप्पल मैक है
0: जी।
1: तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है 20 points per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स
0: जी,
1: ठीक है, 20 points per dollar ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स। अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के हाथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो Uber Eats से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या Uber Ride लेते होंगे
0: जी, बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है। अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप Uber में कन्वर्ट कर दो,
0: ओके,
1: 5 मिनट का काम है
0: जी,
1: आपको Uber वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो Uber के ऐप में, एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank, visa or master, या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे Uber से
1: जाओ, कार्ड खरीदो, वुलीस तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार्ड खरीदो, टॉप अप करो, आपका 20 points, अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है खाने पीने पे Uber से या Uber Rides पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल,
1: ठीक है, 5,000, what's 5,000 by 20, 100,000,
0: अच्छा वाह।
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है वुलीस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: तो आपके व्यूअर्स शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ, वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो, अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके क्वांटस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीस इज क्वांटस, और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में, ओके,
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके क्वांटस में आ जाएंगे। सिमिलरली कोल्स में गए, फर्क इतना है, क्वांटस आ जाएंगे उसी सेकंड, वेलोसिटी जो है वो कोल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस, बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स। और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑज़ी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो
0: जी,
1: साल में एक एवरेज बंदा चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है. मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है. लेकिन ये तो सिर्फ एक है. आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड्स हैं जो हर हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे.
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी.
1: यू कैन अर्न 10 points per dollar, नॉट 1 point per dollar, 10 points per dollar. और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली.
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं उनमें करते हुए,
1: उनमें अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है. अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है सर्विस है दैट इज गेयर्ड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे. बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं. सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट. अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली, 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं. 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने. 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास
0: 3 lakh पॉइंट पे.
1: हाँ जी,
0: मतलब एक, सिर्फ एक बंदे के 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने की.
1: एवरेज 70,000 की भी हो सकती है, 80 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको. मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो. अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं. अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में.
0: जी
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न. तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया.
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है.
0: ओके, जब आई गेट योर पॉइंट है ना. जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं, सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी है ना. ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना
1: कॉल्स चल रही होगी सिर्फ ऊबर के.
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वूलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे.
1: काफ़ी टाइम से, 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वूलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी.
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट. कल किसने देखा, नो वन हैज अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना. बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं.
0: ओके,
1: रेगुलरली किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वूलीज जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, या अब एम्प्लॉयज़ को भूल जाओ, अब हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं. अगर आप क्रेडिट कार्ड दे, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो 3-4 जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं. नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है. अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCM ही हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज कर सकते हो.
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है. एवरी वीक इस साल, अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ 2 हफ्ते ऐसे आए हैं जहाँ पे 10% ऑफ था.
0: ओके,
1: उसके अलावा हर वीक 20 points per dollar, 10 points per dollar ऑन गिफ्ट कार्ड्स.
0: ओके,
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूँ मैं अभी.
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं कि यार इतना इतना कौन सोचे क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा. मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम भी इंडियंस, हम बहुत वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है. जैसे कि मैंने कहा, वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स. सो इफ यू, जहां तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट. आजकल तो एआई आ गया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं. चैट जीपीटी, क्लाउड, लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं. आप उतना मत करो, आप चैट जीपीटी को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है. कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो. दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है. इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है. ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है. ये तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स. बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50% तो ऐसे हो गया. बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला.
0: हाँ, दोस्त, ये तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती. जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए. कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई पीआर लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो. राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट. तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई? बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट, द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड आल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से इजी होगा. कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो.
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी.
1: राइट, आई डू वन ऑन वन कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग. तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में. उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडला, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन इकॉनमी. बिजनेस अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी.
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर. रिटर्न
0: अच्छा, वाह,
1: $3,600 AUD फॉर 2 adults एंड अ टॉडलर रिटर्न. आप बता दो कि इट इज अ गुड डील और नॉट?
0: इट इज अ गुड डील, काफी गुड डील वैसे तो.
1: हाँ, अब ये जो लेडी है ये थोड़ी सी एनालिटिकल है, तो इन्होंने स्प्रेडशीट बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में. 5 hours. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ यू डिवाइड 15,000 बाय 5 hours कितना आता है?
0: 3,000.
1: हाँ, अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी. इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं, तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी. इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ 6 है, तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं. बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे. राइट, साफ सी बात है. तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट. अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं कि $1,200 में family of six is going to India and coming back.
0: Wow.
1: Family of six. क्योंकि बाकी उनके points organic थे. Organic मतलब gift cards. अभी मैंने insurance की बात नहीं कर रही है. Home insurance, car insurance, private health insurance.
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता है.
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल. प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना. राइट. कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस. आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए. देयर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100. अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक. 2 लाख पॉइंट दे रहे हैं वो.
0: अच्छा.
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000. वैसे एक बिजनेस को $2 लाख खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स. अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा. और अगर यही 600 दे के आपको 2 लाख पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
0: ह्यूज डील.
1: इट्स ह्यूज ह्यूज.
0: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
1: कर सकते हैं. बट यू नीड अ फायर इन द बेली. लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए. क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं. राइट. बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ़ यू कैन डेडिकेट. क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे. ठीक है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
0: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा. ये मेन है.
1: आई नो
0: बाकी बात.
1: आई नो ये मेन है बट ये मेन नहीं होना चाहिए. बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2000 की आती है, 1800 में नहीं हो सकता.
0: हाँ ठीक है. मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न.
1: हाँ लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2.5 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े.
0: हाँ वो तो. हाँ मतलब एवरीबडी लाइक्स अ गुड
1: डील. एवरीबडी वुड लाइक टू डू इट. राइट. इवन विदाउट डूइंग अ सर्वे 90% ऑफ योर क्लाइंट जो आपके लिसनर्स हैं अगर वो ये बात सुने तो 90% वुड पुट द हैंड अप एंड से ये मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2500 या 2500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है विच मीन्स लाउंज 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है. लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे. और एक और चीज़ है जेट लैग. एटलीस्ट 5 फैमिलीज इन द लास्ट 6 डेज हैव टोल्ड मी कि हॉलीडे से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, गेस्ट घर पे कौन बैठा है? पेरेंट्स.
0: बिल्कुल सही.
1: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? पेरेंट्स को.
0: बिल्कुल.
1: तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ गई? पेरेंट्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी ना.
0: बिल्कुल सही बात है.
1: और जब वो बिजनेस में जाते हैं तो कोई जेट लैग नहीं होता.
0: ये वेट का तो बहुत इशू रहता
1: है. ठीक है ना.
0: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर. तो आपकी बात तो सही है.
1: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो. प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4.
0: अगर मैं ऐसे, सॉरी आपको टोका, अगर मैं ऐसे डाइसेक्ट कर दूं
1: जी,
0: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
1: जी,
0: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को 1 वे की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर अ,
1: आप 1 लाख ठीक ठाक, मोटा मोटा
0: चलो 1 लाख पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे, है ना. तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है?
1: So, पर हेड हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
0: जी.
1: ठीक है. आपको 1 लाख में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1 लाख क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
0: जी.
1: इकोनॉमी होगी आपकी, प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की.
0: ओके.
1: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता.
0: बिजनेस
1: का मुझे पता, बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरी डे. प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70 से 80 के बीच में, 68 भी हो सकती है.
0: Okay.
1: अराउंड 70 लगा लेते हैं
0: जी.
1: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है. और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ. अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो.
0: ओके.
1: एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम.
0: ओके,
1: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
0: अच्छा
1: उससे सस्ते में, उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो.
0: ओके, अब इसमें एक और आ जाता सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
1: जी
0: इकट्ठे करने पे
1: जी.
0: तो ये कंपनीज, क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 इयर्स है ना,
1: हाँ जी.
0: तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही है पहले से कि कम कर रही है?
1: 100% ज्यादा कर रहे हैं. अभी मैंने आपको अच्छा. बताया कि कॉन्टेस्ट 2,00,000 पॉइंट दे रही है,
0: तो बढ़ रहा है, मतलब
1: बढ़ रहा है.
0: ओके.
1: अभी AMP बैंक है. एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट, 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
0: जी,
1: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
0: जी.
1: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट.
0: Okay.
1: बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10, 50, $1,00,000 बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है. उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10 से 50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं. मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. आप एक बार सोच कर देखो, व्हाई विल अ बैंक डू दैट? ठीक है,
0: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया, थैंक यू वेरी मच. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
1: जी,
0: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
1: जी?
0: बिकॉज हैविंग सेड दैट, ये मैं आपने क्या बताना है मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया, या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, किसी बैंक कंपनी का नाम लिया, तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम.
1: नो,
0: आप उनके एजेंट नहीं है.
1: नहीं, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है,
0: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है. ये आपने देखा, खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं, राइट?
1: बिल्कुल.
0: तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
1: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
0: जी.
1: वो 2 साल के लिए लंदन गया था.
0: ओके.
1: तो उसने बुलाया मुझे. तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का, क्रिस फ्लायर कार्ड, जो अब नहीं है.
0: ओके.
1: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
0: जी.
1: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे.
0: ओके.
1: अब एज यू डू, आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
0: जी.
1: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है. इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था.
0: ओके.
1: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे.
0: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया? ओके.
1: क्योंकि मैंने अपने लॉग इन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है, क्या है. तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000. तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है. देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए. हो गए तो वहाँ पे चीज़ लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम. बटन दबाया, बैठे हो, बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल. 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
0: जी.
1: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में.
0: पॉइंट खत्म हो गए,
1: पॉइंट ही नहीं. अब आप खुद सोचो, आप इतनी चौड़ी, आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की?
0: जी जी जी.
1: ठीक है
0: जी,
1: इतनी चौड़ी होती है
0: जी,
1: राइट? और इकोनॉमी कितनी होती है?
0: हाँ,
1: आपको ऐसे खाना पड़ता है.
0: मेरा तो ज्यादा बुरा हाल होता है, मैं तो घुटने,
1: आप अपने ये, हाँ
0: यस,
1: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
0: जी.
1: ठीक है,
0: बिल्कुल.
1: तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था, जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स, लिटरली टीयर्स में था. तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है, इसको पढ़ना है. तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी. तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए.
0: ओके.
1: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया. बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया, एक फ्रेंड की हेल्प करी.
0: Okay.
1: तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर. उसके पास 1,000,000 पॉइंट्स थे, लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या. तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स.
0: क्या बात है भाई, रॉकस्टार में था, टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता. आपके ट्रॉमा से काफी लोग सीख पाए और सीख रहे हैं. थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ. जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से, और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू.
1: जी, पहली बात तो ये है कि देखो, पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
0: जी,
1: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
0: जी.
1: ठीक है, मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी बिटवीन 30 and 60 ईयर्स ऑफ एज, सो दे हैव लिव्ड देयर फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ. और लोगों को होता है कि यार मैं अपना सेकेंड हाफ तो कम से कम थोड़ा सा कम्फर्ट में बिताऊँ. तो जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी आउटगोइंग्स जा रही हैं, अगर एक तरीका है उसको मैक्सिमाइज करने का बिना पैसे खर्च किए. अभी ऑर्गेनिक पॉइंट्स की बात हो रही है, हमने बिजनेस की बात तो करी ही नहीं ज़्यादा. ठीक है, अगर एक तरीका है तो मैक्सिमाइज इट, तो आप क्यों ना करो, स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कम्फर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं. ठीक है, नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी, जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, एंड यूट्यूब. ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस, क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी. वेयर डू वी टर्न लेफ्ट इन टू बिजनेस एंड फर्स्ट. तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया, टर्न लेफ्ट फॉर लेस. तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी. और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं, इस महीने वो 24th जून को है, देन द वेबसाइट एड्रेस इज
0: LP.
1: ठीक है, L फॉर लीमा, P फॉर पापा, LP जैसे लैंडिंग पेज होता है ना, lp.turnleftforless.com.
0: जी,
1: और लास्ट थिंग, अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं. कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके, अगर वो रेडियो हंजी करके लिखेंगे, आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन.
0: इसलिए तो बुलाया है कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें, फ्री कंसल्टेशन ले एक बार, और फिर बाद में जैसा आपका मन माने, वन ऑन वन करनी है जी, मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं. ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए, हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया, ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया, ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए. पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है. एपिसोड कैसा लगा, और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा, और आपकी लाइफ में कोई खास तब्दीली आई या नहीं आई, कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए. ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट. मैं हूं कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय, देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।